ठीक है दीप को मॉडल जनरली पीपल कम दे दे विल हैव देयर ओन वर्शिपिंग द पीपल मिसिंग द गॉड डू देयर सिंस टू कवर देयर सिंस यू विल हैव अ बेटर लाइफ इन योर लाइफ व्हाट यू हैव सीन इट व्हाट यू हैव डन एवरीथिंग विल बी सबसाइडेड.